जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास, धन धन सत संगत जित हर

सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शिश की है। सेव परिवार, आनंद परिवार, लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुर नदर करे दे महावाकां अनुसार सेवक परिवार नूं महान खुशियां प्रदान कीतियां, जो सेवक परिवार अपने लाडले सपुत्र जो कबीर सिंह जी का जन्म दिहाड़ा मना रहे हैं। अज का सारा प्रोग्राम उन्हां वल्लों लिखा गया है। दास नूं भी बेनती आई है कि तुसी भी इस तरह के शब्द, खुशी के शब्द गायन करने, बेनती के शब्द गायन करने। और गुरु प्यारे, जिहड़े गुरु की असीस लेंदे ने, जिन्हां नूं गुरु की असीस है, लोक परलोक दे सुख उन्हां दे मगर मगर तुरे फिरदे हन, उन्हां ते कृपा हो जाती है, बख्शिश हुंदी जिन्हां ते गुरु की असीस जिन्हां नूं मिल जाती है। और शब्द राही आपां ने बच्चे नूं असीस देनी है, नाल गुरु की असीसां लैणियां ने। जीवत जीवत जीवत रहो, राम रसायण नित उठ पीवो। सतगुरु बख्शिश करदे ने, किसे बजुर्ग नूं मत्था टेकीए, ओह कहिंदे जिउंदा रहो, ते जे गुरु नमस्कार करिए, गुरु नूं मत्था टेकीए, ते सतगुरु कहिंदे जिउंदा रहो जिउंदा रहो जिउंदा रहो। तीन वारी बचन करदे सतगुरु, पर कहिंदे पुत्र एक गल चेते रखी, राम रसायण नित उठ पीवो, हर हर हर हर रसना कहो। नेता प्रति अमृत वेले उठ के वाहिगुरु का सिमरन करना है, अपनी रसना ते निमख न बिसरो, तुम कहो हर हर सदा भजो जगदीश। निमख मात्र भी तेनू वाहिगुरु का नाम ना भुले, ये अपने बच्चे लिए असीस करनी है, अरदास करनी है। और शब्द गायन करिए, जीवत जीवत जीवत रहो।

तुम ही जाने नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु तिनै ताप निवारण हारा दुखन तास परास ता कहो बिघन न कहो लागे जाकी प्रभागे अरदास अरदास क्यों का श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास सहाय अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए करनाओ निधावे ताए सब थाई होए सहाय धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जीओ सब थाई होए सहाय दसा पातशाह की जागत जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दा ध्यान तरके बोलना जी पंजाब प्यारियां चौहान साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया बन सकिया देख चलाई देख भाई देख के अंडिट किता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिना सिंगा सिंगणिया ने धर्म ऐसी दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइया चरखणियां ते चढ़े आरिया नाल चीरे गए गुरुद्वारे लिए कुर्बानियां कितिया धर्म नहीं हारिया सिखी कैसा स्वासा संग निभाई तिना दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां शब्द ग्रंथ का ध्यान तरके बोलना जी प्रथमे शब्द खालसा जी की अरदास है शब्द खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवै चित आवन का सदका सर्व सुखोए जहां जहां खालसा जी साहब तां तां रचे रियायत देख पेख पते वृद्ध की बैज पंथ की जी श्री साहब जी खालसे जी के बोल वाले बोलना जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पदा रखा अकाल पुरख अपने पंथ दिसदा साहिब दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन ते सेवा संभाल दा दान बख्शना जियो हे निमाणियों के मान नितानियों के तान नियोटियां की ओर नियासियों के आसरे जागे जोत पिता साहिब तन तन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियो आप जांदे चरण कमलां च अरदास बेनती जोधरी सतगुरु जी घरां च बैठ के लाइव कीर्तन जिहड़े सरवण कर रहे हन माया भेट कीती सारियां दी प्रवानगी करनी सतगुरु जी हाजियां लेखे चलाना हिरदे अंदर नाम दा निवास करना सतगुरु जी ओ अरदास है बच्ची जीवा अते बच्चा कबीर दा जन्म दिन है सतगुरु जी ओ बच्चियां नूं चढ़दी कला ला जीवन बख्शिश करना आप जिहां दे महावाक हन लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर कहे सतगुरु जी ओ आप जिहां दे चरण कमलां च अरदास बेनती जोधड़ी सतगुरु जी संध्या समय आप जिहां दे कीर्तन होए हन सतगुरु जी ओ कथा हुई है अरदास हुई है बेअंत भुलां हो गया होणगियां बख्शण हार बख्श लेना सतगुरु जी असी खते बहुत कमावन दे अंत ना पार वार कर कृपा करके बख्श लेहो हम पापी वड गुनागार सतगुरु जी सारी संगतां दी अरदासां प्रवान करनियां हाजरियां प्रवान करना सारियां दे हिरदे अंदर नाम दा निवास करना सतगुरु जी इस वेले अपना पावन हुकमनामा बख्शिश करो ते हुक्म ते चलण दी समर्था बख्शिश करनी अखर वादा काटा पुल चुक माफ करने सरबते कार्य रास करने सही प्यारे मेल जिन मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम वाहिगुरु जी का खालसा दोहरा आज्ञा पई अकाल की सब सिखन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मानियो जो प्रभु को मिलवोच है

गुरुदेवे नमः अष्टपदी सिमरौं सिमर सिमर सुख पावौं कल कलेश तन माहि मिटावौं सिमरौं जास विसंबरे कै नाम जपत अगंत अनिकै वेद प्राण सिमरत सुदाक्यर कीने राम नाम एकाक्यर किनका एक जिस जीव सावै ताकि महिमा गनी न आवै कांखी एक दर्श तुहारू नानक उन संग मोहे उदारू सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै प्रभ कै सिमरन साथ कै संग सर्व निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा प्रभ कै सिमरन विनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभ कै सिमरन दर गहमानी प्रभ कै सिमरन हुए सुफला प्रभ कै सिमरन सुफल फला से सिमरै जिने आप सिमराए नानक ता कै लागो पाए प्रभ कै सिमरन सब ते ऊचा प्रभ कै सिमरन उदरे मुचा प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहि सुमाए प्रभ जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन।

प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अंधक नेरे प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे संत कृपा ते अंधिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु कै सिमरन कारज पूरे प्रभु कै सिमरन कबु न चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सह समानी प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरह से जन जिन को प्रभु माया नानक तिन जन सरनी पाया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग वेद उपाए हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीच चौं कुंट जाते हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की सगल अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन।

प्रभु सात अष्टपदी जय मात पिता सुत मीत न पाई मन ऊहा नाम तेरे संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दलै तह केवल नाम संग तेरे चलै जय मुश्किल हुवै अत भारी हर को नाम किन माहे उधारी अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया हर का नाम जपत होए सुखिया लाख करोरी बंधन परै हर का नाम जपत निस्तरै अनिक माया रंग तिख न बुझावै हर का नाम जपत आघावै जे मार्ग जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नाम सदा तिहाइयै नानक गुरमुख परम गत पाईऐ छूटत नहीं कूट लख बाही नाम जपत है पार पराई अनिक बिघन जय आए सुंगार है हर का नाम तत्काल उधार है अनिक जो जन्म मर जाम नाम जपत पावे विश्राम हौ मैला मल कबू न तू वै हर का नाम कूट पाप को वै सा नाम जपू मन रंग नानक पाई है साध कै संग जे मार के गन जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा जे पैडे मांद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जहां पथ तेरा को न सियानू हर का नाम तै नाल पहचानू जय महा प्यानु तपत बोकाम तै हर के नाम की तुम परछाम जात्रिका मन तुझ आकर कै तह नानक हर हर अमृत बर कै भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग रते रंग कै नानक जन कै बिरत बिकै हर का नाम जन को मुक्त जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परै न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहि बियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै मालक जीना हर धन जन को आप प्रभु दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पूजन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक।

किति तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लता नाम की महिमा संत ऋदुवसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विड भागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत विख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नान गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीव माँ उदास पिसर थी वै अगन माय होमत प्राण कनिक सुब है वर भूमदान न्यौली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर श्री कटावे ताओ पी हो मैं न जावे हर के नाम समसर कछ नाहि नान गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टै गर्भ गुमान मन ते उठै सोच करे दिन सरात मन की मैल न तन ते जात इस देह को बहु साधना करे मन ते कबू न भिख्या तरे जल तो वह बहु देह नीत शुद्ध कावे काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊच नानक नाम उदरे पतत बहु मूच बहु सियानप जमका पौ व्यापै अनिक जतन कर तृष्ण ना त्रापै भेख अनेक गनी बुझै कूट उपाव दर गैनी सिजै झूठ सुनायु पयाल मुह व्यापै माया जाल अवर कर तू सगली जमडानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै हर का नाम जप दुख जाए नानक बोलै सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लूरे सा संगे हो मैं छूरे जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै विमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते उच्चा जाका मनो सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सिर साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप नहीं लेपा निर्धन को तन तेरो नाओ नितावे को नव तेरा थाओ निमाने को प्रभ तेरो मान सगल कटा को देवो दान कर्ण करावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत मित जानो आपे अपन संगा प्रवराते तुमरी उस्त तुम ते हुए नानक वर न जान सकोए सर्व धर्म है श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म सगल क्रिया में उत्तम क्रिया साध संग दुर्मत मल हिरिया सगल उद्यम है उत्तम पला हर का नाम जपो जी सदा सगल बानी मह अमृत बानी हर को जसन रसन बखानी सगल तान ते उत्तम थान नानक जी कट वसै हर नाम श्लोक निर

अगस्तपदि जे प्रसा छत्ती अमृत कारी तिस ठाकुर को रख मन माही जी प्रसा सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पाव है जी प्रसाद वसै सुख मंदर तिसै त्याय सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सुदा त्याय त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सोई जय मन आठ पैरता का जस गावी जय जी प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बकाने जी प्रसाद तु रहता धर्म मानु सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जी जप दर गै मान पावे नानक पद छेती कर जावे जी प्रसाद आरु कंचन देही लिव लावो तिस राम सुनेही जी प्रसाद रौला रहत मन सुख पाव है हर हर जस कहत जी प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रता कह जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे जे प्रसाद पाई दुर्लभ दे नानक ताकि भगत करे जे प्रसाद आ भूखन पहरी जय मन ते सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद सो हस्त सवारी मन तिस प्रभु को कबू ना बिसारी जे प्रसाद बाग मुलुक तना राख पुरो प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बंत बनायु उठत बैठ सत सहते आई तिसै त्याय जो एक अलख है यहाँ उहाँ नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तुआ चार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरे सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तेर निकी जात सो प्रभु सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पतरै गुरु प्रसाद नानक जसकै है जे प्रसाद सुने करनाद जे प्रसाद वेखै बिस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जे वसना जे प्रसाद हस्त कर चलै जे प्रसाद संपूर्ण फलै जे प्रसाद परम गत पावै जे प्रसाद सुख सह समावै सब प्रभु त्याग और कत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभु को मूल न मनो विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूल तू ताको जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसै जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तू पावै साथ रे मन मेरे तू ता स्योरा जे प्रसाद सब की गत होई नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभु दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभु तेरी माया पू कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नानक किन कै कछु न हाथ श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सुमुखता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचर्य कथास्तपदि साधक संग मुखो जलो साध संग मन सगली कोत साधक संग मिटै अभिमान साधक संग प्रगटै सुज्ञान साधक संग बुझै प्रभु नेरा साध संग सब होत नवेरा साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन साधकी महिमा वर्णै कौन पुरानी नानक साधकी शोभा ब्रह्मा ही समानी साधक संग गुच्छर मिलै साधक संग सदा प्रफुल्लै साधक संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग सबकी रेन साधक संग मनोहर बैन साधक संग न कतूं तावै साध संग स्थित मन पावै साधक संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कै संग महा पुनीत साध संग किस्यो नहीं बैरु साधक संग न बीगा पैरु साधक संग ना ही कुमंदा साध संग जाने परमानंदा साधक संग ना ही होताप साधक संग तजै सव्याप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबहु तावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग बस तगो चरलै साधु कै संग अजर सहब साधक संग बसै थान उच्चै साधु कै संग मैल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदारै साध संग साजन मीज कुटुम्ब निस्तारै साधु कै संग सो तन पावै
जिस तन ते सब को बरसावे सा संत धर्म राय करे सेवा साधक संग सुबा सुर देवा साधु कै संग पाप लाए नु सा संग अमृत गुण गाय नु साधक संग सर्व थान गामु नानक साधक संग सफल जन्म साधक संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहां उहां सुहेला साध संग बिछड़त हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उतरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मंथि बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै परम मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जानै जिता सुने तिता बखियान साधक उपमा त्यो गुण ते दूर साधक उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा उचते उची साध की शोभा मूचते मूची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभेद न पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख कस बिन कोए नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी के तृष्ट समान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक ज्यों बसुदा को दह को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जलाओ ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मत्तर सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रव्याप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नातम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक उपर्यास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश

तावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उदार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कै रंग, ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये, ब्रह्म ज्ञानी को खोजै महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गातु ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा

ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी, श्लोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार, नानक अपर सगल निस्तार, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, परत्र रूप न पिख नितर, साथ की टैल संसंग हेत, कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आप उसको मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नानकूट मध्य को ऐसा परस, वैष्णो सोज सुप्र सुप्रसन्न, विष्ण की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हुए निकर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानकू वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिन से सगला परम, कर पूजे सगल पार ब्रह्म, सासुन पापा मलख हुवे, तिस भगवती की मत उत्तम हुवे, भगवंत की टैल करे नित नीत, मन तन अर्पे विष्ण प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रबुद्ध, राम नाम आत्म में शुद्ध, राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर जो नया वे, वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सा सुन पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तारे, अस्परेत मुगत पाथर को तारे, सर्व रोग काउ कद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहु जुगत कित न पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मानु पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिसन द्री आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह परवान, अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सूझी परे, सगल संगत मुदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे, तैसा हरक तैसा सुसोग, सदा अनंत ते नहीं वियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा विमान, तैसा रंक तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक को पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर रख है तैसा तिन्नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभावे सुई फुन होग, पसरे आप अंत तरंग, लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, श्लोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पार अवार, नानक रचना प्रवृचि, बहुविधनिक प्रकार अष्टपदी, कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नानक करते कंत न पावे,
कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्व कौहिर है कई कोट पर दुख न कर है कई कोट माया श्रमाए कई कोट परदेश परमाए जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जान करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर वृक्ष निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट सस्य सूर्य नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सिर छत्र सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राजस ताम सातक कई कोट वेद प्राण सिमरत अर्शास्त्र कई कोट कीर्तन संबंध कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरिमेर स्वर्ण थीवे कई कोट जखे किनर पिशाच कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा सब ते नीरे सबूते दूर नानका फलिप्त रहा भरपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी कई कोट जन्म है जीव मरे कई कोट बोजूनी फिर है कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट काल है थक पाए कई कोट किए तनवंत कई कोट माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कह हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी कई कोट प्रभ को खोजंते आत्म मह पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको होए आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन कई कोट काणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट धोए अवतार कई युगत किन्नो विस्तार कई बार पसरे उपासा सदा सदा के कंकार कई कोट कीने बपात प्रभ ते हो ब्रह्माय समात ताकांत न जाने कोई अपे आप नानक प्रभ सोई कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवता तम प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारे को नित्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर भय सत सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्मरा सुख सह सुमावे अपने जन को साथ साथ सुमारे नान कोई परमेश्वर के प्यारे सुलोक करण कारण प्रवेक है दूसर नाही कोई नानक तिस बलिहार नै जल थल महील सोयष्टपदी करण करावन करनै जोग जो तिस पावै सोई होग किन मैं तापो तापन हारा अंत नहीं किच पार हवारा हुक्मे धार धर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनिक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक समय रहा सुमाई प्रभावै मानुख गत पावै प्रभावै ता पाथर तरावै प्रभावै बिन शास्त्र राखै प्रभावै ता हर गुण भाखै प्रभावै ता पथ तुधारै आप करै अपन विचारै दुहां सिरियां का आप स्वामी खेलै विकसै अंतर जामी जो पावै सुकार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै कहो मानुख ते क्या हुए आवै जो तिस पावै सुई करावै इसके हाथ हुई ता सब किच ले जो तिस पावै सोई करे अनजानत विख्या मैं रचै जे जानत अपने आप बचै भरमे भूला तै दिस्तावै निमक माए चार कुंट फिरे आवै कर कृपा जिस

रामू गरीब निवास जाका दृष्ट कछु न आवे तिस तत्काल दा दिस प्रगटावे जाकू अपनी करे बख्शीस ताका लिखा न गने जगदीश जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बनता बनाई नानक जीवे देख बढ़ाई इसका बल नाही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो ज्योत स्वभाव है सुई फुनतीयो कब हूँ ऊंच नीच में बसे कब हूँ सोग हर्ख रंग हसे कब हूँ निंद चिंद व्यवहार कब हूँ ऊब आकाश पयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानकाप मिला वनहार कबू नृत्य कर बहुपात कबू सोए रहे दिन रात कबू मां क्रोध विकराल कबू सर्व की हो तरवाल कबू होए बह बड़ राजा कबू पेखारी नीच का साजा कबू अपकीर्त में आवे कबू पला पला कहावे ज्यो प्रवराखे त्यो ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कबू हुए पंडित करे विख्यान कबू मोन धारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिर साधिक मुख ज्ञान कबू कीट हस्त पतंग हुए जिया अनिक जोन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावे जो प्रभावे त्यो नचावे जो तिज पावे सोई हुए नानक दूजा अवर न कोई कबू सा संगत त्यो पावे उस स्थान ते बौर न आवे अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत नामृत एक रंग सदा बस है पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुर्बान श्लोक सुखी बसै मस्कीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपरी जिसका अंतराज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहा वै जन मरै भोजन परमा वै धन भूमिका जो करे गुमान सो मूर्खंदा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावे नानकी हां मुक्ता गै सुख पावे धनवंता होय कर गरबावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर मानुख ऊपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्मराय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जाका मिटे विमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावे सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनिक जतन करा तुम नहीं द्रवै हर दर गह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिस है भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन हुए कहु नानकता की निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ हुए तब इसको सुख ना ही कोए जब ही जाने मैं किच करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चलना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुर प्रसाद नानक हो छूटै सहस कटे लकूट तावै तृप्त न आवै माया पाछे पावै अनिक भोग बिखिया की करै नै तृप्तावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बृते सब काजै नाम रंग सर्व सुख हुए बड़भागी किसे प्राप्त हुए करन करावने आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए
आपे आपा प्रभ सोए, जो किछ कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सब कै संग, पूजे देखे करे विवेक, आपै एक आपै अनेक, मरै न बिनसै आवै न जाए, नानक सद ही रहा समाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप गिनु अपन विस्तार, सब कछु उसका करने हार, उसते पिन कहो किछ होए, थान थनंतर कै सोए, अपने चलताप करने हार, कौतक करे रंगा पार, मन में आप मने अपने माहे, नानक कीमत कह न जाए, सत सत सत प्रभु स्वामी, गुरु प्रसाद किने विख्यानी, सच सच सत सब कीना, कोट मदे किन बिरले चीना, भला भला भला तेरा रूप, अत सुंदर अपार अनूप, निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी, कट कट सुनी श्रवण बखियाणी, पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत, नाम जपै नानक मन प्रीत। श्लोक संत शरण जो जन परै, सो जन उदरन हार, संत की निंदा नानका, बहुर बहुर अवतार। अष्टपदी संत कै दुखन आर जा कटै, संत कै दुखन जमते नहीं छुटै, संत कै दुखन सुख सब जाए, संत कै दुखन नरक में पाए, संत कै दुखन मत हुए मलीन, संत कै दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखे न कोई, संत कै दुखन थान प्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करे, नानक संत संग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कै दुखन काग जो लवै, संतन कै दुखन सर्प जोन पाए, संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए, संतन कै दुखन तृष्णा में चले, संत कै दुखन सब को छलै।

सोचै कोई, तिस बिन नाही तेरै किछ काम, गत नानक जपे कर नाम। रूपवंत होए नाही मोहै, प्रभ की जो सगल कट सोहै। धनवंता होए क्या को गर्वै, जा सब किछ तिसका दिया धरवै। अत सूरा जे को कहावै, प्रभ की कला बिना कहता है। जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गावार। जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग। क्यों मंदर को थामै थम्मन, त्यों गुर का शब्द मनै अस्थम्मन। ज्यो पाखा नाव चढ़ तरै, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै। ज्यो अंधकार दीपक प्रगास, गुर दर्शन देख मन होए विगास। ज्यो महा ध्यान में मार्ग पावै, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै। तिन संतन की बांचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिललाइयै, पूर्व लिखे का लिखिया पाइयै। दुख सुख प्रभ देव नहार, अवर त्याग दूत सहचितार। जो कछ करै सोई सुखमान, भूला काहे फिरे अजान। कौन बसताई तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हृदय माहे, नानक पद छेती कर जाहे। जिस वक्कर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया। तज मान लेहो मन मूल, राम नाम हृदय महतूल। लाद के संत संचाल, अवर त्या बिखिया जंजाल। धन धन कह सब कोए, मुख उजल हर दर गह सोए। एहो अपार विरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार है। चरण साध के तोय तोय पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की तूर करहो स्नान, साध ऊपर जाइये कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइये, साध संग हर कीर्तन गाइये। अनिक बिगंते साधु राखै, हर गुण गाय अमृत रस चाखै। ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मेरे

लिखे का लहना पाई, सब किस का करने जोग, तिस बिंदु सर हुआ न होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब त्योच निर्मले करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सोजन निर्मल थिया। जा कै मन गुर की प्रतीत, जन आवे हर प्रवचीत, भगत भगत सुनिए त्यालोए, ताजा कै हृदय को हुए, सच करनी सचता की रहत, सच हृदय सत मुखत, सची दिस सच्चा आकार, सच वरत सचा पासार, पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सत सुमाता। श्लोक रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न, तिसहि बुझाइ नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। अष्टपदी अविनाशी ब्रह्मन मैं राख, मानु की तू प्रीत्याग, तिस्ते पर नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए, आपे बिना आपे धाना, गैर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निदान दयाल बख्शंद, सा तेरे की चरणी पाओ, नानक है मन हो नराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरण भरण जाका नित्र होर, तिसका मंत्र न जाने होर, अनदरू मंगल सजा कह, सर्व थोक सुनिए करता कह, राज में राज युग में जोगी, तब मैं तविश्वर गृष्ट में भोगी, त्याय त्याय भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत न पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सगल पुरु अपने सूत, समत ज्ञान ध्यान जिन दे, जन दास नाम त्या वैसे, त्यो गुण में जाकू परमाहे, जन्म रह फिर आवै जाय, ऊंच नीच इसके स्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करै रंग, नाना बिर किन्नो विस्तार, प्रभ बनासी एकंकार, नाना चल करे किन माहे, पूरे हो पूर्ण सब ठाए, नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसके सब तिसके ठाओ, जब जब जीवै नानक हर नाओ, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड, नाम के तारे सिमृत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संगुदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाई, नानक चौथे पद में सो जनगत भाई, रूप सत जा का सत स्थान, पुरुख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरुष समाहि समानी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरु ते पाई, सत वचन साधु उपदेश, सत तेजन जा कर हृदय प्रवेश, सत निरत बुझै जे कोए, नाम जपता की गत होए, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गत, जिसके सिर सुकर ने हार, वरण बूझ करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योत स्वभाव सो वर्तिया, बिस्मन विस्म भय बिस्माद, जिन बूझिया तिसे आया स्वाद, प्रभु कै रंग राज जन रही, गुरु कै वचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जाके संत रह संसार, जन का सेवक सोवड भागी, जन के संगी किलिव लागी, गुण गोविंद कीर्तन जन गावे, गुरु प्रसाद नानक फल पावे। श्लोक आद सच जुवाद सच है पे सच, नानक होसी पे सच। अष्टपदी चरण सत सत परसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखनहार, नाम सत सत्यावन हार, आप सत सत सब धारी, आपे गुण आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभक्ता, सुरत सत सत जसुनता, बुझनार को सत सब हुए, नानक सत सत प्रभ सोए, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करण कराउन तिन मूल पछानिया, जा कर हृदय विश्वास प्रभ आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पै ते निर्भव हुए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माय समाना, बस्त माई ने बस्त गढ़ाई, ताको पिन्ना कहना जाई, बुझे बुझनहार विवेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी,
ठाकुर के सेवक के मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रवता है, नानक सो सेवक सास सास मार है, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर राखे, अपने दास को देव डाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आपत राखे, ताकि गत में तो कोई न लाखे, प्रभु के सेवक को न पहुंचे, प्रभु के सेवक उचते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दिस प्रगटाया, निकी कीरी में कल राखे, पसम करे लश्कर कोट लाखे, जिसका सास न काटते आप, ताकू राख देख रहात, मानस जतन कर्तव्य पात, जिसके कर्तव्य ते जात, मारण राखे और न कोई, सर्व जिया का रखा सोए, काही सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रबलख विडाणी, बारं बार बार प्रभ जपिए, पिय मृत्यु मंथन त्रपिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किच अवर नाही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रजो जन त्रिपताने, मंथन नामे नाम सुमाने, उठत बैठत सोवत नाम, गौ नानक जन कै सत काम, भूलो ज जीवा दिन रात, प्रभ अपने जन की नीदात, करे भगत आत्म कह चाहे, प्रभ अपने सो रह समाये, जो हुआ होत सो जाने, प्रभ अपने का हुक्म पहचाने, तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कह एक न जानू, आठ पैर प्रभ से हजूरे, कौ नान से जन पूरे, मन मेरे तिन की उठ ले, मन तने अपना तिन जन दे, जिन जने अपना प्रभु पचाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, तिसके दर्श पा मिटावे, अवर से अनुभ सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा।

सतगुर सिक्के बंधन काटे, गुर का सिख विकार ते हटे। सतगुर सिक्को नाम धन दे, गुर का सिख गुड भागी हे। सतगुर सिक्का अलत पल सवार, नानक सतगुर सिक्को जी नाल संवार। गुर कै ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावे, हर हर नाम हृदय सत्यावे। मन विचै सतगुर कै पाओ, तिस सेवक के कार्य राज। सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक, आप नहीं कछ पर मुंसा। सियान भुलया ना चाहिए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाइये। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे। सुनकर वचन करन आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने। पूरा गुर रखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्टि पिक हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावे तिस लय मिलाए। जे बाए कुष्ठत अनेक, सतपुरख पूर्ण बवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई। अनेक भगत बंधन नित कर, चरण कमल हृदय सिमर। सद बलिहारी सतगुरु अपने, नानक जिस प्रसाद वैसा प्रभ जपने। यो हर रस पावे जन कोय, अमृत पीवे अमृत होए। उस गुर का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश शिव को दे। मोह माया के संग न ले, मन मेरा के हर हर एक। अंधकार दीपक प्रगासी, नानक परम दुख तहते नासे। तपत माहि ठाड वरताई, आनंद भया दुख नाटे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे। पौ चुका निर्भव हुए बसे, सगल ब्याद मंते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी, सा संग जप नाम रारी। थित पाई चुके प्रम गवन, सुन नानक हर हर श्रवन। निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही। अपने चित प्रभाव बनाए, अपने कीमत आपे पाए। हर बिंदु जाना ही कोई, सर्व निरंतर को सोए। उत्पुत रव्या रूप रंग, पये प्रगाश साध कै संग। रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ न चाले बिन भजन, बिख्या सगली चार। हर हर नाम कमावना, नानक धन सार अष्टपति। संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार। अवर भाव समीत विसारो, चरण कमल हृदय में उतारो। करण कारण सो प्रभ सुमरथ, दृढ़ कर गहो नाम हर वत। एव तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत्र। एक आस रखो मन माहि, सर्व रोग नानक मिट जाहि। जिस तन को चार कुंट उठतावे, सो तन हर सेवा ते पावे। सुख को नित बाचे मीत, सो सुख साधु संग परीत। जिस सुबह को करे फली करनी, सा सुबह पजहर की सरनी। अनिको भावी रोग न जाए, रोग मिटे हर अब कदलाए। सर्व निदान में हर नाम निदान, जब नानक दर गय परवान। मन प्रबुद्ध हर कहनाए, दादिस्तावता बैठाए। ताको बिघन लागे कोई, जा कर देव से हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पौबिन से पूर्ण हुए आस, भगत पाया तुम पर घास। तित कर जाए बसे बिनासी, कौ नानक काटी जम फांसी। तत् विचार कह जन साचा, जन मरे सो काचो काचा। आवा गवन मिटे प्रभु सेवा, त्याग शरण गुरुदेव। एवं रतन जन्म का हुए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनिक भावना छुट नारी, सिमरत शास्त्र भेद विचारी। हर की भगत करो मन लाए, मन वंचित नानक फल पाए। संग न चाल स्थिर तना, तू क्या लपटा वह मूर्ख मना। सुत मीत कुटम्बर बनता, इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया।

कहो कवन छुटकार सस्तीरथ सुवारी झूठा डव झूट पा सारी जिंदी तिस बुझे न बिगाना ना विसार नानक पछताना गुर की मत तूले यानी भगत बिना बहु डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारू चीत चरण कमल राखू मन माही जन्म जन्म के किल बिक जाहि आप जपू अवरा नाम जपावू सुनत कहत रहत गत बावू सार भूत सत हर को नाऊ सह सुभाय नानु गुण गाव तिरी त्रिसमैल बिनस जाए ओ मैं बिख फैल हुए चिंत बसे सुख नाल सास ग्रा सुर नाम सुमाल छाड़ सियान सगली मना सासंग पावे सच तना हर पूंजी संच करो बेवारी हां सुखदर कह जयकार सर्व निरंतर एको देख नानक जाके मस्त कले किको जापे को साला एक सिमर एको मन आए एक के गुण गाओ अनंत मंत्र जाप एक भगवंत एको एक कारा पूर्ण पूरे प्रभाप अनेक विस्तार एक ते भय करात प्राचित गए मंथ ने अंतर एक प्रवराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रवेंती अपनी भक्ति लाए पति जाचक जन जाचे प्रदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मांगो तूर पार भर मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो सास सास प्रभु तुम्हें ते आवो चरण कमल सिंह लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगा नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्ट मां सुख होए हर स्वभाव बिरला कोई जिन चाक्या से जिन तृप्ताने पूर्ण पुरुख नहीं डोलाने सुपार परे प्रेम रस रंग उपजा चाव साध कै संग परे सरनान सब त्याग अंतर प्रगा संदिन विलाग बिडभागी जपया प्रभु सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेव कीनो सदा निहाल बंधन काट मुख जन भया जन मन दुख भ्रम गया चुपनी श्रद्धा सब पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जी अगन में राखे गुरु प्रसाद गुबिर लाखे सो क्यों बिसरै जी बिकते काट है जन्म जन्म का टूटा काट है गुरु पूरा तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो ये काम यान त्याग जी पूर्ण नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भक्त पाए चरिये संसार बिन भक्ति तन होसी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल लोक का हो तनास नानक नाम जपू गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाऊ मंथन अंतर ही सुहाऊ नित रूपेक दर सुख हुए मन भिक्ष सा चरण तोये भगत जिना के मंथन रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लाया ताकि उपमा कही न जाए नानक रह सर्व संभाए प्रभ बख्शांद दीन दयाल भगत वच्छल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा कृत प्रतपाल आदपुर कारण करता भगत जना के प्राण धार जो जो जपै सुहे पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण प्रभु भगवान सर्व कुंड मुक्त मुख पाए निम कर के गुण गाए निकराज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई ओ भोजन कापुर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सुबा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सात संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानक आया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्य कच न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी आपन सुन समाद तब वैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर शोक किस व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मुह का सोबत भरम अपन खेला वरती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभु केवल धनी तब बंद मुक्त को किसको गनी जब एक कह रगम पार तब नरक सुर को कौन अवतार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डरै अपन चलता आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अपना सी सुख अपन आसन
तय जन्म मरण कहो का बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की तास कहो किसोए जब अभिगत गुचर प्रवेका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपना पापी चर जा नानक अपन रूप पापी उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल छिद्र लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावै तय किस कवन तृप्तावै करण करावन करण हार नानक करते का ना सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै प्रवीन तय वेद कतेव का कुचीन जब अपन आप आप उतार है तो सगन अप सगन कहा विचार है जय अपन ऊंच अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मर विस्मर विस्माद नानक अपनी गत जानु आप जय अचल छेद भेद समाया वहां किस व्याप्त माया आपस को आप आदेश त्यो गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लाग चिंता जय अपन आप आप त्यारा तय कौन कथे कौन सुनने आरा बो बेअंत ऊंच ते ऊंचा नानक पुष्को आपचा जय आप रचियो प्रपंचकार त्यो गुण मैं किन्नु विस्तार पाप उनते भई कहावत को नर को सुर्ग वंचावत आज जगाल माया जंजाल हो मैं वो परम पै पार दुख सुख मान अपमान के प्रकार की हो बख्यान आपन खेल आप कर देखे खेल सुकुच है तो नानक कह जय विगत भगत है आप जय पसरै पासार संत प्रताप दू पाका पे तनी उनकी शोभा नू बनी आप कौत करे आनंद चूज आप रस भोगन निरजोग जिस भाव है तिस अपना इलावै जिस भाव है तिस खेल खिलावै बेसमार था गंते तुलै जो बुलावो त्यो नानक दास बोलै श्लोक जी जंत के ठाकुर आपे वर्तनहार नानकी को पसरिया दूजा कह दिष्टार अष्टपदि आप कथे आप सुनने हार आपै का विस्तार जात भावै तै सृष्ट उपाय अपने भाने लै समाए तुम ते पिन नहीं किच होए आपन सू सब जगत परोए जाकू प्रभु जी आप बजाए सच नाम सुई जन पाए सो समदर्शी तत् कविता नानक सगल सृष्ट का जीता जी जंत्र सबता के हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तिस कोई न मारे सो मुआ जिस मनो बिसारे तिस तज अवर कहां को जाए सब सिरेक निरंजन राय जी की जुगत जाके सब हाथ अंतर बार जानो साथ गुण निदान बेअंत पार नानक दास दा बलिहार पूरन पूरे दयाल सब ऊपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रतपालै जीवन बहु भात जो जो रचो सो तिसै तिहात जिस भावै तिस लै मिलाए भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मानिया करनहार नानक के जानिया जन लागा हर एक कह नाय तिसकी आस न बिरति जाए सेवक को सेवा बने आई हुकम बूझ परम पद पाई उसके ऊपर नहीं विचार जा के मन बसिया निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अन दिन पूज है गुरु के पैर ये लोक सुखिए पर लोक सुहेले नानक हर प्रव्या पह मेले सात संग मिल करो आनंद गुण गावो पर परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देह का करो उदार अमृत बचनर के गुण गाओ प्राण तरण का यह सुहाओ आठ पैर प्रपेखो नीरा मिटे ज्ञान बिन से अंधेरा सुन उपदेश हृदय बसावु मन चे नानक फल पावो हालत पलत दोए लेहु सुवाद राम नाम अंतर उधार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बसे ते साच परिखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द मन ते पहु जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगह निभै के तुम्हारी काटे रखो मन माही नानक बहुर न आवह जाहि तिस्ते दूर कहा को जाय उबरे रखन हार त्याहि निप जपै सगल पौ मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुट्टै जिस प्रभ राखै तिस नाही दूख नाम जपत मन हो वसूख चिंता जय मिटै अहंकार तिस च
ਚੰਨ ਕਉ ਕੋਈ ਨ ਪਹੁੰਚਣਹਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਉੱਪਰ ਠਾਡਾ ਗੁਰਸੂਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ, ਮਤ ਪੂਰੀ ਅਮਰ ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖ ਦੁਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕੇ ਅਨੂਪ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁੰਦਰ ਹਰ ਰੂਪ। ਧਨ ਸੇਵਾ ਸੇਵਕ ਪਰਵਾਨ, ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਸ ਮਨ ਬਸੈ ਸੋਹਤ ਨਿਹਾਲ, ਤਾਕੇ ਨਿਕਟ ਨਯਾਵਤ ਕਾਲ, ਅਮਰ ਪਏ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਸਲੋਕ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮਿੱਠਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਸੁਕਟ ਮਾਹੀ, ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦਿਸ਼ਟਾਹੀ। ਨਾਉ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਦੇਹੀ, ਮਹਿਸ਼ ਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਸੁਨ ਸਮਾਨੰਦ ਹਰਿ ਤੈ ਨਾਥ, ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਈ ਚਜ ਵਿਸਮਾਦ, ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ, ਨਾਨਕ ਤੀਜਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ, ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ, ਘੜ ਘੜ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ, ਤਰਨ ਮਾਇਆ ਆਕਾਸ਼ ਭਿਆਲ, ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਬੰਤਨ ਪ੍ਰਭੁ ਥੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ, ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਮਾਹੀ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਤੈ ਦਿਸੇ ਸਮਾਏ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਹੀ ਕੋਠਾਓ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਓ, ਭੇਦ ਪ੍ਰਣ ਸਿਮਰਤ ਮੈਂ ਦੇਖ, ਸਸੇ ਸੂਨ ਖੇਤਰ ਮੈਂ ਏਕ, ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੈ, ਆਪ ਡੋਲਾ ਕਬੂ ਡੋਲੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ, ਬੋਲਾ ਪਾਈਏ ਗੁਨੈ ਅਮੋਲ, ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾ ਕੀ ਜੋਤ, ਧਾਰ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਉਤ ਪੋਤ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਹੋ ਵਿਸਾਸ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਪੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਣੈ ਸੁ ਬਚਨ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਤ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਚਨ, ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ, ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ, ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ, ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭਤੀ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕ ਅੰਕਾਰ, ਅਨਿਕ ਲਾਲਕੀ ਨਹਿ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲੈ ਮਿਲਾਏ, ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ, ਆਪੇ ਆਪ ਭਰਪੂਰ, ਅੰਤਰ ਗਜ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨਿਆ ਬੁਝਾਏ, ਸਰ ਭੂਤਾ ਵਰ ਤਾਰਾ, ਸਰਬ ਨੈਨਾ ਭਿਖਨ ਹਾਰਾ, ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾ ਕਾ ਤਨਾ, ਪੰਜਸਾ ਪੇ ਸੁਨਾਵਨ, ਜਾਨ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ, ਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੈ ਮਾਧਾ ਲਿਪਤੋ ਰਹਿ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੁ ਆਪੇ ਕਹਿ, ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਾ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਲੈ ਸਮਾਏ, ਇਸਤੇ ਹੋਏ ਸੁਨਾਹੀ ਬੁਰਾ, ਉਰੈ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ, ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਤ ਨਿੱਕੀ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ, ਆਪ ਸਾਚ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ, ਓਤ ਪੋਤ ਆਪਣ ਸੰਗਰਾਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ, ਜਿਸਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਜਾਨ, ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੂਏ, ਓ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ, ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ, ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਭਾਉ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਸਲੋਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ, ਸਾ ਸਾ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀ ਉਤਰੈ ਚਿੰਦ, ਆਸ ਨਿਤਿਆ ਗੋਤਰੰਗ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਧੂਰ ਮਨ ਮੰਗ, ਆਪ ਛੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਤਰੋ, ਹਰ ਤਨ ਕੇ ਪਰਲੇ ਹੋ ਭੰਡਾਰੋ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਪੂਰੇ ਨਮਸਕਾਰ, ਖੇਮ ਕੁਸਲ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਜ ਪਰਮਾਨੰਦ।

सुन सुन अर्ध करे प्रभु का जय। प्रगटे गोपाल महांत कह माथी, नानक उदरे तिन कह साथी। शरण जोग सुन शरणी आए, कर कृपा प्रभु आप मिलाए। मिट गए बैर भय सबरेन, अमृत नाम सा संग लैन। सो प्रसन्न भय गुरुदेव, पूर्ण हुई सेव की सेव। आल जंजाल विकार ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते। कर प्रसाद दया प्रवतारी, नानक निभे खेप हमारी। प्रभु की उस्तत करो संत भी, सावधानी का कर जीत। सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सुहोत निदान। सर्व इच्छाता की पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए। सब ते उच पाए स्थान, बहुर न हो वह आवन जान। हर तन काट चले जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए। खेम शांत रित नव नित, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध। विद्या तप योग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान। चार पदार्थ कमल प्रगा, सब कै मद सगल ते उदास। सुंदर

सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रवना भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह भंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपां लख होहे तां इक न चलै नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ै तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मे होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मे होवन जी हुक्म मिले वड्याई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाई है एक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कह ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जाने निशान गावै को गुण वडियाईयां चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तनखे गावै को जी लै फिर देह गावै को जपै दिसै दूर गावै को विखै हादरा हदूर कथना कथी ना आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट दिंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मे हुक्म चलाए राहो नानक विगसै वे परवाहो साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख है मंग है देह देह दात करे दातार फेर के अगे रखिया जित दिसै दरबार मोह के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मुख द्वार नानक इवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निधान गाविया सुनिया मान रखिए पाओ दुख पर हर सुख कर ले जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कह जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे तेहा कोई ना सुझई जे तिस गुण कोए करे सुणै सिद्ध पीर सुरनाथ सुणै धरत धवल आकाश सुणै दीप लो पाताल सुणै पोहे ना सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुणै दुख पाप का नास
ਸੁਣਾ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਸੁਣਾ ਮੁਖ ਸਾਲਾ ਹਨਮੰਦ ਸੁਣਾ ਜੁਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਾ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਾ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਾ ਅੜਸਠ ਕਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਣਾ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਾ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਾ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਾ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਾ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਾ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਾ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨਾ ਲਿਖਣ ਹਾਰ ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧ ਮੰਨੈ ਮੋਹੇ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ

ਮਨ ਨਾਨਕ ਭਵ ਹੈ ਨਾ ਭੇਖੋ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ ਪੰਚ ਪਰਵਾਣ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵਹ ਦਰਗਹ ਮਾਨ ਪੰਚੈ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੈ ਕਰਣੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰ ਤਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾਂ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁੜੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲਿਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਲਿਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਹੋ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੋ ਦੁਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਖ ਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵਡ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਸ਼ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰ ਹੇ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗਮ ਅਗਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਾਹੇ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜਿਵ ਫੁਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤਿਵ ਪਾਹੇ ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਦ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰ ਸੋਖੇ ਮੂਤ ਭਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੇ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬ੍ਰਹਮਾਉ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁਤੀ ਮਾਹ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨ ਪਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਖਤ ਨ ਪਾਇਓ ਕਾ ਦੀਆ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁਤ ਮਾਹ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਰ ਠੀਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾ ਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪੋ ਜਾਣੈ ਅਗੈ ਗਇਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾ ਪਾਤਾਲ ਲਖੋ ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ ਓੜਕ ਓੜਕ ਭਾਲ ਥਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇਕ ਵਾਤ
सहस अठारह कहन कतेबा असलो एक तात लेखा होए ता लिखी है लेखा होए विनाश नानक वड़ा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाहे एति सूरत न पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद न जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल न होवनी जेते समन होना भी सरा है अंत न सिखती कहण न अंत अंत न करण देण न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारवार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत न पाए जाहे एहो अंत न जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड़ा साहेब ऊंचा थाऊ ऊंचे ऊपर ऊंचा नाऊ एवड़ ऊंचा हो वै कोए तिस ऊंचे कौ जाने सोए जेवड़ आप जाने आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया न जाए वड़ा दाता तिल न तमाए किते मंगह जोद अपार किते अगणत नहीं विचार किते खप तुट है बेकार किते लै लै मुकर पाहे किते मूर्ख खाही खाहे कितिया दुख भूख सद मार ए पे दात तेरी दातार बंद खलासी पाने होए होर आख न सकै कोए जे को खाए को आखण पाए ओह जाने जेतिया मुहे खाए आपे जाने आपे दे आख है से पे केई के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारिये अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबाण अमुल तुल अमुल परवान अमुल बखसीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या न जाए आख आख रहे ले विलाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्याण आख है बरमे आख है इंद आख है गोपी तै गोविंद आख है ईसर आख है सिद आख है किते किते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जन सेव किते आखे आखण पाहे किते कह कह उठ उठ जाहे केते कीते होर करे ता आख न सक है केई के जे वड़ पावै ते वड़ होए नानक जाने साचा सोए जे को आख है बोल विगाड़ ता लिखी है सिर गावारा गावार सो दर केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावण हारे किते राग परि स्यों कहियन किते गावन हारे गावह तुहन पाउन पाणी बै संतर गावह राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इंदासन बैठे देवत्यां दर नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर की सर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मश पयाले गावन रतन उपाय तेरे आठ साठ तीरथ नाले गावह जोत महाबल सूरा गावह खाणी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से ही तुदनो गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई हैपी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिन सी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई ज्योतिष भावै सोई कर सी हुक्म ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहेब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरंपत चोली ध्यान की करह बिभूत किंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत
आई पंथी सगल जमती मन जीत जग जीत आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध संजोग विजोग दोए कार चलावह है लिखे आवह भाग आदेश तिस आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवाण एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीबाण जिव ते सुभावै तिवै चलावै जिव होवै गुरमान ओ वेखै ओना नदर ना आवै बहुता एहो वेडाण आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी बौ लख होहे लख होवै लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़ियां चढ़िया हुए अकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ै ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देण न जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती थिति वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्म साल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथै सोहन पंच परवान नदरी कर्म पवै निशान कच पकाई उथै पाए नानक गया जापै जाए धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म किते पवन पाणी वैसंतर किते कान महेश किते बरमे घाड़त घड़ियै रूप रंग के वेश कितियां कर्म भूमि मेर केते केते धूप देस केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देस केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेस केते देवदानव मुन केते केते रतन समुंद केतिया खाणी केतिया बाणी केते पात निरिंद केतिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथै नाद विनोद कोड आनंद शर्म खंड की बाणी रूप तिथै घाड़त घड़िया बहुत अनूप ताकियां गल्लां कथियां न जाहे जे को कहै पिछै पशुताए तिथै घड़िया सूरत मत मान बुद्ध तिथै घड़िया सुरां सिद्धां की सुध कर्म खंड की बाणी जोर तिथै होर ना कोई होर तिथै जोध महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर तिथै सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे ना ओहे मरहे ना ठाके जाहे जिनकै राम वसै मन माहे तिथै भागत वसै के लो करहै आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल तिथै खंड मंडल वर भंड जे को कथा है ता अंत ना अंत तिथै लो लो आकार जीव जीव हुकम तिवै तिव कार वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार पौ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़ी ऐ शब्द सची टकसाल जिन कौ नदर करम तिन कार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुए दाई दाया खिलै सगल जगत
ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ, ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹੇ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕਿਹੇ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦ੍ਰ ਇੰਦ੍ਰਾਣ, ਸਾਹੁ ਸਹਾਣ ਗਣ ਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ, ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਤਵ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਣਤ ਸੁਮਤ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਧਾਮੰ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸ਼ੇਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ, ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਮਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ, ਨਮਸਤੰ ਤਿਰਵਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸਜੋਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੰਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਗਮੇ, ਨਮਸਤਸਤਰਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ, ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਸੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ, ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੌਨੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੰਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਦਯਾਲੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਬਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ, ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰ, ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ, ਨਮੋ ਸਤ ਅਬੰਦੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ, ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ, ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ, ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ, ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ, ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੂਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੋਖੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ, ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਯਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਅਰੂਪ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, ਅਜੂ ਹੈ, ਅਪੂ ਹੈ, ਅਲੇਖ ਹੈ, ਅਪੇਖ ਹੈ, ਅਨਾਮ ਹੈ, ਅਕਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ, ਅਪੇ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਤਿਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਤਿਰਵਰਗ ਹੈ, ਅਸਰਗ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਹੈ, ਅਜੇ ਹੈ, ਅਜਾਦ ਹੈ, ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਵਰਨ ਹੈ, ਅਪੂਤ ਹੈ, ਅਪਰਨ ਹੈ, ਅਗੰਜ ਹੈ, ਅਪੰਜ ਹੈ, ਅਜੂਜ ਹੈ, ਅਝੰਜ ਹੈ, ਅਮੀਕ ਹੈ, ਰਫੀਕ ਹੈ, ਅਤੰਦ ਹੈ, ਅਬੰਧ ਹੈ, ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ, ਅਸੂਜ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜਾਲ ਹੈ, ਅਲਾਹ ਹੈ, ਅਜਾ ਹੈ, ਅਨੰਤ ਹੈ, ਮਹੰਤ ਹੈ, ਅਲੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ, ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ, ਅਸੰਭ ਹੈ, ਅਗਮ ਹੈ, ਅਜਮ ਹੈ, ਅਭੂਤ ਹੈ, ਅਛੂਤ ਹੈ, ਅਲੋਕ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ, ਅਕਰਮ ਹੈ, ਅਪਰਮ ਹੈ, ਅਜੀਤ ਹੈ, ਅਪੀਤ ਹੈ, ਅਬਾਹ ਹੈ, ਅਗਾਹ ਹੈ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਯਾਤ ਛੰਦ, ਨਮੋ ਸਰਬਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ, ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ, ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਗੌਣੇ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ, ਨਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ, ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ, ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ, ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ, ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ, ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ, ਨਮੋ ਭਾਨ ਪਾਨੇ, ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ, ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ, ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ, ਪ੍ਰਭੰਗੀ ਪ੍ਰਮਾਥੇ, ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ, ਕਲੰਕੰ ਬਿਨਾਨੇ, ਕਲੰਕੀ ਸਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਾਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਰੂਪੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗ ਵੇਸਵਰੰ ਪਰਮ ਸਿੱਧੇ, ਨਮੋ ਰਾਜ ਰਜਵੇਸ਼ਵਰੰ ਪਰਮ ਬਿਰਧੇ, ਨਮੋ ਸ਼ਸਤ੍ਰ ਪਾਣੇ, ਨਮੋ ਅਸਤ੍ਰ ਮਾਣੇ, ਨਮੋ ਪਰਮ ਗਿਆਤਾ, ਨਮੋ ਲੋਕ ਮਾਤਾ, ਅਭੇਖੀ ਅਭਰਮੀ ਅਭੋਗੀ ਅਭੁਗਤੇ, ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੁਗ ਵੇਸਵਰੰ ਪਰਮ ਜੁਗਤੇ,
नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत अप्रेत देवे सुतहर्मे, नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे, नमो साहसाहंग नमो पूप पूपे, नमो दान दाने नमो मान माने, नमो रोग रोगे नमस्तं इशनानंग, नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग, नमो एष्ट एष्टे नमो तंत्र तंत्रंग, सदा सच्चिदानंद सर्वं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्तुल निवासी, सदा सिद्धदा बुद्धदा बिरद कर्ता अदो उर्द अर्धं अगं ओगहर्ता, परं परं परमेश्वरं प्रोषपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं, अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तास्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं थले हैं अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयात छंद, अगादे अबादे आनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमाने समस्ति निधाने, नमस्तवंग निरनाथे नमस्तवंग परमाथे, नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अभंजे, नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले, नमो सर्वदेशे नमो सर्वभेषे, नमो राज राजे नमो साज साजे, नमो शाह शाहे नमो महामाहे, नमो गीत गीते नमो प्रीत परीते, नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे, नमो सर्वरोगे नमो सर्वभोगे, नमो सर्वजीतं नमो सर्वपीतं, नमो सर्वगयानं नमो परमतानं, नमो सर्वमंत्रं नमो सर्वजंत्रं, नमो सर्वदृशं नमो सर्वकृशं, नमो सर्वरंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं परसिजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सिद्धं निवासी, चरपट छंद त्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे, अकाल कर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने, सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुगता, सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले, रुआल छंद त्वा प्रसाद आदरूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेव आद उदार, सर्वपालक सर्वकालक सर्वको पूर्ण काल, यत्र तत्र विराज ही अवतूत रूप रिसाल, नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख, देश और ना पेश जाकर रूप रेख न राग, यत्र तत्र दिशा विशा होय फैल्यो अनुराग, नाम काम विहीन पेख तम हूँ नह जाहे, सर्वमान सर्वत्र मान सदैव मान तताहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेल न अंत को फिर एक, देव पेव न जानही जिह बेद और कतेब, रूप रंग न जात पात सो जानई केह जेब, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र बकर फिर चतुर चक मन ही पोर तीन, लोक चौदह के बिखै जग जापई जिह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जिह थाप, परम रूप पुनीत मूरत पूर्ण पुरख अपार, सर्व स्वरच्यो स्वयंभव गणन पंजन हार, कालहीन कला संयोगत अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहत अपूत अलख अपेश, अंग राग न रंग जाकै जात पात न नाम, गर्भ गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम, आप रूप आमीक अन उस्तत एक पुरख अवतूत, गर्भ गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत, अंगहीन अपांग अनात्म एक पुरख अपार, सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्राप्त पार, सर्व गंता सर्व हंता सर्व ते अनपेखो, सर्व शास्त्र न जानहि जिहि रूप रंग अर रेखो, परम वेद पुराण जाकह नेत पाकत नेत कूट सिमरत, पुराण शास्त्र न आवहि वह चेत, मधुभार शंत्व प्रसाद गुणगन उदार महिमा अपार, आसन अपांग उपमा अनांग अनपौ प्रकाश, निस दिन अनास अजान बाहु साहान साह, राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान, इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल, अनपूत अंग अप अपंग गत मित अपार, गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निरपय निकाम,
आत दूत प्रचंड मितगत अखंड आलिसय कर्म अदृश्य धर्म सर्वा प्रणाढ्य अंडंड बाढ़ चाचरी छंद त्व प्रसाद गोविंदे मुकुंदे उदारे अपारे हरियं करियं निरनामे अकामे भुजंग प्रयात छंद चित्र चक्र करता चित्र चक्र हरता चित्र चक्र चक्र दाने चित्र चक्र जाने चित्र चक्र वर्ती चित्र चक्र भरती चित्र चक्र पाले चित्र चक्र काले चित्र चक्र पासे चित्र चक्र वासे चित्र चक्र माने चित्र चक्र दाने चाचरी छंद न सत्र न मित्र न परम न पितर न कर्म न काये अजन्मंग अजाये न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र प्रतिशय अदिशय अदृशय अकृशय भगवती शांत व प्रसाद कासते के आशेज देश है के अभिज पेश के अगंज कर्म है के अपंज परम है के अभिज लोक है के आदित शोक है के अवधूत वरण है के बेभूत करण है के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आशोक वर्ण है के सर्वा अपर्ण है के जगतंग कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपौ अनुप है के आद अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बहीने के एक है अधीने के रोजी रजा के रही मेरे हाक है के पाक बेऐब है के गै भूल गैब है के अप बुल गुना है के शाहान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दहन दहें के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वत्र माने हैं के सर्वत्र दाने हैं के सर्वत्र गौने हैं के सर्वत्र पौने हैं के सर्वत्र देश है के सर्वत्र भेषा है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र साज है के सर्वत्र दीन है के सर्वत्र लीन है के सर्वत्र जाहु के सर्वत्र पाहु के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है के सर्वत्र सुख है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है के सर्वत्र जाप्य है के सर्वत्र थाप्य है के सर्वत्र पान है के सर्वत्र मान है के सर्वत्र इंद्र है के सर्वत्र चंद्र है के सर्वं कलीमे के परमंथ हिमे के आकल अलामे के साहिब कलामे कि हुसनल वजू हैं तमामल रजू हैं हमेशो सलामे सलीखत मुदामे गनीमल सिकस्त है ग्री बुल परसुत है बिलंदुल मकान है जमीनल जमान है तमीजुल तमाम है रजुअल निदान है हरीफल अजीम है रजायक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त बेभूत है प्रभुगत प्रभा है सुजुगत सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है समस्तुल सलाम है सदैवल अकाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंग आद रूपे अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभृग त्रिपादे अगंजे अगाधे सुभंग सर्वभागे सुसर्वा अनुराग त्रिभोगत स्वरूप है अशेज है अशूत है कि नरकंग परनाश है पृथ्वील प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है विभुगत स्वरूप है प्रजुगत अनूप है निरुक्त सदा है विभुगत प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुगत अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाद है जुवाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अपगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनिंत है अलिख है अधिक

ते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र है न पुत्र है न सत्र है न मित्र है न ताता है न माता है न जाता है न पाता है नृसाकं सरीक है अमित अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांत तो प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशुल सलाम है समासुल कलाम है के साहेब दिमाग है के हुस्न चिराग है के कामल करीम है के राज करहीम है के रोजी दहें दहें के राज करहें दहें करीमुल कमाल है के हुस्नल जमाल है गनीमल खिराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शिकान है हिरासुल फिकान है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकंग प्रणास है बहस्तुल निवास है के सार भूल गुवन है हमेशुल रवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परंग परम ईस है समस्तुल अदीस है अदेशुल अलेख है हमेशुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलंग प्रकाश है कि अमितो सुभाष है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है कि आत्म प्रभा है कि अचलंग अनंग है कि अमितो अपंग है मधुभार शांत त्वा प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अरबर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशेज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विश अपंड जल थल महंत दिस विश बेअंत अनुभव अनासु त्रित तर तुरासु अजान बाहो एक सदाहो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछेज गात आजे न बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म आत तीठ कर्म अनभ्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत त्व प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरन है जाग के करण है मन मान्य है जग जान है सर्वंकर है सर्वंकर है सर्वपाश है सर्वनाश है करुणा कर है विश्वम्बर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खलखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणीकृत है अमृतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजपाकृत है अमृतामृत है नरनायक है खालकायक है विश्वम्ब्र है करुणालय है निरपनायक है सर्वपायक है भाव भंजन है अरिगंजन है रेप तापन है जाप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म बस है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तम संग शांत रूपे नमो परम ततंग अततंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्र अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अशरी शांत अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अडा अनाथे प्रमाथे अजूनी अमूनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते
सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्रीमल कुनिंदा समस्त।

निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरियं करियं करिमुल रही में चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते चत्र चक्रवर्ती चत्र चक्र पुगते सुयं भव सुभं सर्वदा सर्व जुगते दुकालं प्रणासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेभूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें त्व प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिधान के देख फिरयो कार जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मात को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जार संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पाउन के गौन कौ जात निवारे पारी पुजान के पूप पली वेद न्यावत शीस न जात बिचारे इते पय तो कहा पय पूपत अंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फेराए सब देश दिशान को बांजत टोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत पवेख पवान के पूपत कौन गनाए नहीं जात बिचारे श्री पत श्री भगवान भजे बेन अंत को अंत के ताम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संजम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बेन पूपत एक रति बन एक न लेख है सुध सिपाहा दुरंत दुबाहा सो साज सुना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले ना हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पशैया तोरत देश मलेंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत पवैक पवान जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे उन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खापेंगे साध समूह प्रसन्न फिरै जग सत्र सवै अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोट इस नानक जादित दान अनेक सुअम्बर साज बरेंगे ब्रह्म महेसर बिसन सची पत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्री पत के प्रस है पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बाक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो पर लोक गवायो बास कियो बिख्यान सो बैठो कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सोन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू लै पाहन पूज तरयो सिर काहू लै लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पशा को शीस निवायो को बुतान कौ पूजत है पाश को मृतान कौ पूजन तायो ऊर क्रिया ऊर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर किरिया उर्जेओ सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवें कवियो बाच बेनती चौपाई
हमरे करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सबे तुम कावो, आप हाथ दे मुहे बचावो, सुखी बसे मोरु परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संग्रिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारिया है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया, आप हाथ दय मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया, हूँ जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करे हो रक्षा, राख ले हो मोहे रखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता, काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कार विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेवकियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दायत जक्षण उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो, काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान है, काट काट के पट पट की जान है, जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब तार है, आप अपने बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अर आलम, निरंकार निरपकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव ना पावत बेदा, ताको कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद ना जानत, महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चिन्हत नह पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पेन पेन तो है तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, केह बिद सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही पूपा, अंडज जेरज सेतज कीनी, उत पूज खान बहुर राच दीनी, कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट पयो संकर इकैठा, सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो, दुष्ट जीते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो राण काता, जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखे तो हवै मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो कल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नह आए है, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हरे हो, रिद सिद्ध कर मो सब होई, दुष्ट शाह श्वाय सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारो कहा, दारद दुष्ट दोख ते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्ब ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल विख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को शाय करता, श्री अस तुज जब पय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला,
मन बांशत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो जाहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द भौ निकट न तिन नर की रहै, हो जो जाकी एक बार चौपाई को कहै। चौपाई संबत सत्रह सहस पण जय, अर्ध सहस फुन तीन कहि जय। भाद्रव सुदी अष्टमी रविवारा, तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहे मत एक ना मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद, कहे हम एक न जानेओ। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहे वो सब तोहे बखानेओ। दोहरा सगल द्वार कौशाड कै।

सगल द्वार कौ शाड कै गहेओ तुहारो द्वार, बाहीं गहें की लाज अस गोबिंद दास तुहार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रामकली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावन आईयां, शब्दो ता गावहो हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओ करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा, घर ता तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया, सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द धरहु प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित घर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कहे नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे, साची लिवै बिन देह निमाणी, देह निमाणी लिवै बाजहो क्या करे बेचारिया। तुद बाज समरथ कोई नाही कृपा कर बनवारिया, इस नाउ होर थाउ नाही शब्द लाग सवारिया। कहे नानक लिवै बाजहो क्या करे बेचारिया, आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारे आ। कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया, अंदर रहो जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सच्चे सवारिया। कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु ते जानिया, बाबा जिस तू दे सोई जन पावै, पावै ता सो जन दे जिसनो, होर क्या करे विचारिया। एक भरम भूले फिरै दहें देस एक नाम लाग सवारिया, गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिना भाणा पावै। कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे, आव हो संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाईए। तन मान धन सब सौंप गुर कौ, हुक्म मन्ने है पाईए, हुक्म मन्ने हो गुरु केरा गावो सच्ची बाणी। कहे नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी, ए मन चंचला चतुराई किने न पाया, चतुराई न पाया किने तू सुन मन मेरे आ। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया। कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया, कहे नानक मन चंचल चतुराई किने न पाया। ए मन प्यारे आ तू सदा सच संभाले, ए कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले, साथ तेरे चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईए। ऐसा काम मूले ना कीचै जित अंत पछो ताईए, सतगुरु का उपदेश सुन तू होवै तेरे नाले। कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले,
अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किने तेरा अपना आप तू जान है। जी जंत सब खेल तेरा क्या को आख वखाण है, आख है ता वेख है सब तू है जिन जग तू उपाया, कह नानक तू सदा अगम है तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुर ते पाया, पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए इक वेख परसुन आया, लाभ लोभ अहंकार चूका सतगुरु भला पाया, कहे नानक जिसनो आप तुठा तिन अमृत गुर ते पाया। भगतां की चाल निराली चाला निराली, भगतां केरी बिखम मार्ग चलना, लाभ लोभ अहंकार ताज तृष्णा बहुत नाही बोलना, खन्यो तिखी वाल हो निकी एत मार्ग जाना, गुरप्रसादी जिनी आप तजिया हर वासना समाणी। कहे नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चला है तिव चला है स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चला है तिवै चला है जिना मार्ग पावहे, कर कृपा जिन नाम लाहे से हर हर सदा त्यावहे, जिसनो कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावहे, कहे नानक सच्चे साहेब ज्यो पावै तिवै चलावहे। एहो सोहेला शब्द सुहावा, शब्दो सुहावा सब सदा सोहेला सतगुरु सुनाया, एहो तिन कै मन वसया जिन तुरों लिखिया आया, एक फिरै कनेरे करहे गल्ला गल्ली किने ना पाया, कहे नानक शब्द सोहेला सतगुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया, पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सबाइया, कहंदे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया, कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै विण सहजै सहसा न जाए, नह जाए सहसा कितै संजम रहे कर्म कमाए, सहसे जियो मलीन है कित संजम तोता जाए, मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए, कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजै ए सहसा इव जाए, जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले तिने जन्म जुए हारिया, ए तिशना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया, वेदा मैं नाम उत्तम सो सुनै नाही फिर है ज्यों बेतालिया, कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया, जियो निर्मल बारो निर्मल बारो त निर्मल जियो निर्मल सात गुर ते करनी कमाणी, कूड़ की सोए पहुंचे नाही मन सा सच समाणी, जन्म रतन जिने खटिया पले से वन जारे, कहे नानक जिन मन निर्मल सदा रह गुर नाले। जे को सिख गुरु से ती सन मुख होवै होवै ता सन मुख सिख कोई जियो रह गुर नाले, गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै संभाले, आप छड सदा रह परणै गुर बिन अवर न जाने कोई, कहे नानक सुन हो संतो हो सो सिख सन मुख होए। जे को गुरते वे मुख होवै बिन सतगुरु मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर थै कोई पुछो बबेकिया जाए, अनेक जूनी भरम आवै बिन सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए, कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवो हो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी, बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी, जिन कौ नदर कर्म हो वह हृदय तिना समाणी, पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी, कहे नानक सदा गावहो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी, कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी, हर हर नित कर रसना कहया कछु न जानी, चित जिनका हिर लया माया बोलन पैरवाणी, कहे नानक सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी।
गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा ए हुआ समाओ, शब्द से ती मन मिलिया सच्चे लाया पाओ, आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए, कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेखै गुरमुख किसे बुझाए, तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए, गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एक सस्यं लवलाए, कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार ना जानी, ततै सार ना जानी गुरु बाजौ ततै सार ना जानी, तेही गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रहण विहानी, गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया, बोले अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए, जिसनो अन दिन हर लिव लागै जागत रहण विहानी। माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है, मनो क्यों विसारी है ए वड़दाता, जे अग्न में आहार पहुंचावे उसनो किह पोहे न सकी, जिसनो अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वड़दाता, सो क्यों मनो विसारी है। जैसी अग्न उदर में तैसी बाहर माया, माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया, जाति सुपाणा ता जम्मिया परवार पला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया, ए माया जित हर विसरै मोह उपजै पाओ दूजा लाया, कह नानक गुर प्रसादी जिना लेव लागी तिने विचे माया पाया। हर आप अमूलक है मूल न पाया जाए, मूल न पाया जाए किस विट हो रहे लोग विल लाए, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनो सिर सौंपी है विचों आप जाए, जिसदा जियो तिस मिल रहे हर वसै मन आए, हर आप अमूलक है भाग तिना के नानका जिन हर पल्लै पाए, हर रास मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा, सतगुर ते रास जानी। हर हर नित जपियो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी, एहो तन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा, कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ बन जारा, ए रसना तू अनरस राच रहे तेरी प्यास ना जाए, प्यास ना जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्ले न पाए, हर रस पाए पल्ले पिए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए, एहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिले जिसे आए, कहे नानक हुर अनरस सब विसरे जा हर वसै मन आए। ए श्रीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया, हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया, गुर प्रसादे बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया, कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया। मन चाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया, हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापय, अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस पूगो, कह नानक प्रभ आप मिलया करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मैं ज्योत तहरी, हर बिन अवर ना देखो कोई, हर बिन अवर ना देखो कोई, नदरी हर निहालिया
ਇਹ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ, ਜਾ ਵੇਖਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦੇਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ, ਸਰੀਰ ਲਾਏ ਸੁਣੋ ਸਤ ਬਾਣੀ, ਜਿਤ ਸੁਣੀ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ ਹੋਆ, ਰਸਨਾ ਰਸ ਸੁਮਾਣੀ, ਸੱਚ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ, ਤਾ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ ਸੱਚੈ ਸੁਣਨੈ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਹਰ ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ, ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪਾਉਣ, ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, ਦਸਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਤਹਿ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਾਵਨਿਦ, ਤਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਪਾਇਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰਾ, ਜੀਓ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੈ, ਵਾਜਾ ਪਵਣ ਵਜਾਇਆ। ਇਹੋ ਸਾਚਾ ਸੋਹੇਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵੋ, ਗਾਵੋ ਤਾਂ ਸੋਹੇਲਾ ਘਰ ਸੱਚੈ, ਜਿੱਥੈ ਸਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਆਵਹੇ, ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੈ ਜਾ ਤੁਦ ਭਾਵੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹੇ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹੇਲਾ ਸੱਚੈ ਕਰ ਗਾਵਹੇ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ।

श्री वाहिगुरु साहिब जी, हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाट बिखै बेखो खाई, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई।

0: चकी चक सलवारों ने बोत नंस लाटू मादानिया अनकहा पंखी भूमिया लहना चाह सूवे चाकू है जंत नान पूंजिया गुण प्रांत
1: बंधन बंद तो आए सोई पै।

गुरु गृहनिवास अंतर जम सतर थी आप जी दर दे हाजिर पढ़ते हैं बेअंत गुरसिख माई पाए लो आप जी बन दे सत्कार जो बेअंत माया पिटा करते आप जन सारण सिखिदान प्रोसादान छन्ना करना प्यार रखना खजाने भरपूर करना सो आओ गुरु प्यारी साथ समझो कीर्तन दैनिक सेवा प्रवान करनी होइया भुलना चुका दिखिमा करनी आओ अगले प्रोग्राम अज दे श्री मुखवाक दी विचार कथा सत्कार योग ज्ञानी बचित्र सिंह जी उन्हां पासो सरवण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गौड़ी ग्वारेरी श्री कबीर जीव के चौपदे चौदा अब मोहे जलत राम जल पाया राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ मन मारन कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए जिह पावक सुर नर है जारे राम उदक जन जलत उबारे भव सागर सुख सागर माही पीव रहे जल निखुटत नाही।

कबीर जी नग्न फिरत जाओ पाई है जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नागे क्या बाधे चाम, जब नहीं चीनस आत्म राम। रहाओ मूड मुंडाई जाओ सिद्ध पाई,

चतुराई न चतुर भुज पाई है रहाओ, पर हर लोभ अर लुकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहंग मेव, मिल पाथर की कर ही सेव, कहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाई मिले रघुराया, गौड़ी कबीर जी गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती।

जी, जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहा ही, जान जान सब कह कतहा ही रहाओ, कहन कहावन नह पतियई है, तौ मन माने जाते हों मैं जई है, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग हुए नहीं चरण निवास, कहो कबीर एह कही है काहे, साध संगत बैकुंठ है आहे, गौरी कबीर जी, उपजै निपजै निपज समाई, नैनह देखत

रहाओ। अनिक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जले काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिन सह गुरु देखे सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी

अब मुहि मिल्यू है जिया वनहारा रहाओ। यादे ही परमल महकंदा ता सुख बिसरे।

हम बहुत बसाए। जब हम राम गर्भ हुए आई रहाओ, जोगी जति तपी ब्रह्मचारी। कब हूँ राजा छत्रपत, कब हूँ पेखारी। साकत मरह संत सब जीव है, राम रसा।

पंचपदे। ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना, पूर्व जन्म हो तप का हीना। अब कहो राम कवन गत मोरी, तजी ले बनारस मत भई थोरी। रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तप किया काशी, मरन भया मगहर की बासी। काशी मगहर सम बिचारी, पूछी भगत कैसे उतर सुपारी। कहो गुर गज सेव

गुरमत रस रस हर गुण गावे, रामै राम रमत सुख पावे। कृपा करके नाम दृढ़ाई, हर हर बास सुगंध बसाई।

ऐसी रहत रहूं हर पासा। कहे कबीर निरंजन त्यावो, तित कर जाओ जि बहुर न आवो। गौड़ी कबीर जी तिप देव।

है भार, सो काहे न करे प्रतिपार। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी, बिन सत सती हुए कैसे नार। पंडित देख हो हृदय विचार, प्रीत बिना कैसे बदे स्नेहो। जब लग रस तब लग नहीं नेहो। रहाओ साहन सत करे जी अपने, सोर मैये कौ मिले न सुपने। तन मन धन गृह सौप शरीर, सोई सुहागन कह कबीर। गौड़ी कबीर जी, बिखिया व्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परवार। रे नर नाव चौड़ कत बोड़ी।

सो जल निर्मल कथित कबीर गौड़ी कबीर जी। जे कुल पूत न ज्ञान बिचारी विधवा कस न भई महतारी जे नर राम भगत नह साधी जन्मत कस न मुओ अपराधी रहाओ मुच मुच गर्भ गए कीन बचया बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजया कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप नाम बिना जैसे कुबज कुरूप। गौड़ी कबीर जी। जो जन लेह खसम का नाओ तिन कै सद बलिहार है जाओ सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरे मन भावे रहाओ। जेह कट राम रहया भरपूर तिनकी पग पंकज हम तूर जात जुलाहा मत का तीर सहज सहज गुण रमै कबीर। गौड़ी कबीर जी। गगन रसाल चुवै मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कहिए सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जो मिल आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तौ अन पहु पाया। गौड़ी कबीर जी। मन का सुभाउ मनह व्यापी मनह मार कवन सिद्ध थापी कवन सुमन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाओ।

सरसांधे आ रहा, कटी न कटै टूट न जाय, सा सापन हुए जग कौ खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी

बैकुंठ तुझह ले तारों, हिचै ता प्रेम कह चाबुक मारों, कहत कबीर भले असुवारा, वेद कतेब ते रह निरारा, गौड़ी कबीर जी। जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए, एक दुख राम राय काटो मेरा, अग्न दह अर गर्भ बसेरा रहाओ। काया बेगुती बहुविध पाती, को जारे को गडले माटी, कहो कबीर हर चरण दिखावो, पाछे ते जम क्यों न पठावो।

राम जपत तन जर की न जाए, राम नाम चित रहा समाए रहा, काकौ जरै काहे हुए हान, नटवट खेले सार गपान, कहो कबीर अखर द्वे पाख, हुए

जब ना हुए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जे सिर रच रच बादत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम का ही ना दृढ़ैया रहाओ।

रहाओ। कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहु शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भई राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ। साधु संगत दियो रलाए, पंच दूत ते लियो छिड़ाए। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। सतगुर कीनो पर उपकार,

माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी, जत पेखों तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरी माई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई, जिस कृपा करे तिस पूर्ण साज।

सूतक मुए फुन सूतक सूतक परज बिगोई कहो रे पंडिया कौन पविता ऐसा ज्ञान जपहु मेरे मीता रहाओ नैनो हो सूतक बैनो हो सूतक सूतक श्रवणी होई उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई फासन की विद सब को जाने छूटन की एक कोई कह कबीर राम हृदय विचारै सूतक तिनै न होई गौड़ी झगरा एक नबेर हो राम जो तुम्हें अपने जन सौ काम रहाओ इहो मन बड़ा कि जास्यो मन मानिया राम बड़ा कै राम मैं जानिया ब्रह्मा बड़ा कि जास उपाया वेद बड़ा कि जहां ते आया कह कबीर हो भया उदास तीर्थ बड़ा कि हर का दास राग गौड़ी चेती देखो भाई ज्ञान की आई आंधी सबै उड़ानी भ्रम की टाटी रह न माया बांधी रहाओ दुचिते की दो थून गिरानी मोह बलेटा टूटा किसना छान परी धारू पर दुरमत भांडा फूटा आंधी पाचे जो जल बरख है तेहे तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना।

की राव है। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ की ये भगत ते बाहज तिन ते सदा डरानी रही है। राव आप न देहे चूरू भर पानी, तेह निंद है जिह गंगा आनी। बैठत उठत कुटिलता चल है, आप गए और नुहू काल है। छाड़ कुचर्चा आन न जान है, ब्रह्मा हूं को कहो न मान है। आप गए और नुहू खो वह, आग लगाए मंदिर में सो वह। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख।

जीवत पितर नामा नैको मुए सिराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही। मोको कुशल बताव हो कोई कुशल कुशल करते जग बिनसे कुशल भी कैसे हो रहाओ। माटी के कर देवी देवा तिस आगे जियो देही। ऐसे पितर तुम्हारे कही है आपन कहया न लेही। सर जियो काट है निर जियो पूज है अंत काल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी पह डूबे संसारी। देवी देवा पूजह डोलह पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया बिख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे ऐसे सुन समाया। अंजन माहे निरंजन रही है बहुड़ न पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बिलुइये गुरमत मनुआ अस्थिर राखहो। इन बिद अमृत पियो ये रहाओ। गुर कै बाण बजर कल छेती प्रगटिया पद परगासा। सकत अधेर जेवड़ी भ्रम चूका निहचल शिव कर बासा। तीन बिन बाण तनक चढ़ाइए इहो जग बेदिया पाई। दह दिस बुढ़ी पवन चुलावै डोर रही लिवलाई। उन्मन मनुआ सुन समाना दुविधा दुर्मत भागी। कहो कबीर अनुभव इक देखिया राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागन तिपदे उल्टत पवन चकर खट भेदे सुरत सुन अनरागी। आवे न जाए मरे न जीवे तास खोज बैरागी। मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पही अवरे नातर था बेगाना। रहाओ निवरे दूर दूर फुन निवरे जिन जैसा कर मानिया। अलौती का जैसे भया बरेटा जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काए स्यों कही है ऐसा कोई बबेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी झल देखी। गौड़ी तह पावस सिंध धूप नहीं छैया तह उत्पत पर लो नाही। जीवन मृत न दुख सुख व्यापै सुन समाद दो तह नाही। सहज की अकथ कथा है निरारी तुल नहीं चढ़ै जाए न मुकाती। हलुकी लगै न भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तह नाही रात दिन तह नाही। जल नहीं पवन पावक फुन नाही सतगुर तहा सुमाही। अगम अगोचर रह निरंतर गुर कृपा ते लहिया। कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने सत संगत मिल रही है। गौड़ी पाप पुन दे बैल विसाहे पवन पूजी परगासियो। कृष्णा गुण भरी घट पीतर इन बिंद टांड विसाहियो। ऐसा नायक राम हमारा सगल संसार कियो बन जा रहा। रहाओ काम क्रोध दोए भये जगाती मन तरंग बटवारा। पंच तत् मिल दान नबेरा पंच तत् मिल दान नबेर है टांडा उतरे उपारा। कहत कबीर सुनहो रे संत हो अब ऐसी बन आई। घाटी चढ़त बैल इक थाका चलो गोन छिटकाई। गौड़ी पंच पदा पेव कड़ै दिन चार है सहुरड़ै जाना। अंधा लोक न जाने मूर्ख ए आना।

ज्ञानी लाग रहू भज सरण कबीरा गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा अवर न दूजा भाई रुंडत मुंडत कह सबदी एक है सिद्ध पाई हर बिन भरम भुलाने अंधा जा बह जाओ आप छुटकावन ते बादे मोह फंदा रहाओ ते बादे बहु फंदा रहाओ जह ते उपजी तही समानी ए बिद बिसरी तब ही पंडित गुणी सूर हम दाते एह कह बढ़ हम ही जिसे बुझाए सोई बुझे बिन बुझे क्यों रही है सतगुर मिले अंधेरा चुकै इन विद्वान कलही है तज बावे दाहने बिकारा हार पा

सब जाए सबके दुख मर में पाए। हम के हरे बरके रखोए सबके दुख काम भ्रष्ट होए। संत के दुख से मुख भवे संतन के दुख काम जो धरे। संतन के दुख स्वामी चले संत के दुख सबको चले। हम भोगी का था कोई नाई नान संता बेता हो जीवन पाई। संत का निंदक माँ हथियारा संत का निंदक परमेश्वर मारा। संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग। संत का धोखी सदा अमित संत का धोखी किसे का नहीं मित। संत का धोखी माँ उतारी संत का धोखी सदा विकारी। संत के धोखी को ना उठाओ नानक संपा बेता रे मिलाए। संत के धोखी को ज्ञान भरमाइए संत का धोखी उजड़ पाइए। संत के धोखी की जड़ बिजनाए अपन बीजा पे ही खाए। संत का धोखी योग लाए जीव जल भिन्न मछली कर पड़ाए।

0: वचन सर्वव्यापी राम संगचन
1: ये
0: जो जो हो सोई सुख माने कर्ण करावन हाथ पर जाने आप सब किया सब सत किस पर इस पर सगली उत्पत्त करा लखी न जाए जिस भावे किस नए मिलाए अंतर जिस आप जुनाए नानक तीजन आप बुझाए सदर समझरी जाता तना आपन जस आपकी सुना सबके मत लिप्त हो रहे जो कि क्षण सो आपके कहे इससे हुए सुना ही बुरा ओए कहो कि नहीं कुछ करा आप साधारी सब साथ पोत पोत अपन सकरार इसका किया सब परवान गुरु प्रसाद नानक है जान
1: जो जाने ते स्वास्थ्य
0: धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुकुट हृदय भगवंत
1: राम